0: 前面小局接近的，接着千万级别龙庭的，新建千万南了，噶顿下。接着拉上五米七的里，从这里些中间切局间，打着隔壁永乐边层的，顺着新建部位西松坡。
1: 他这两个都是干什么吧？现在这些人，他明了，我国人民当民，你也把个哪里啊？对呢，他当民是要的干的，对，第一个你去。他当民是用的了，是当个了民，刚刚的刚硬那样啊，他吃的是的，俺说软米这个对呢啊，剁把当，然后落叶了哇，剁把当对呢，炸个对呢，打一点做了，不怕打哑巴嘛，做了怕打没给把瓤子过米，过直接把对呢这。
2: 啊，没事吧？对吧？对，因为适当的民间的感应呢，可是怕打哑巴。因为这当面是比较这，当面是样的，对呢，怕打巴，咱就面积就肯定就关联就没吧的。我那当第一个是当面是样的，干的就关联就把的，是吧？因呢，当面就关联的，面的，让个透明大雨天地里，也是个面的热吧呢？啊，对呢，当面是啊，啊你可别猜个呢，对，因为这是当面是样的了。 天天你明那样，天天当热哇当热哇，就是一句过年打别个明天，当明是呢，他顶上写就去把木木个啊，当明的了，但是真正去解决的。第二个，第一个就天天你明那样啊，天当热哇当热哇啊，等你热哇当热哇，明那样他看大家过得了，等你去怕打哑巴，一般人在他当明是给了哇。第一个就是他，第一个就过天天你明那样，你明是的了过啊，天天你应个了哇。
1: 别讲那啥戏，大有名个是啦，啊，怕大有的了啥戏名大有的，啊，你大啥个有啥戏提拔的啊？啊，可能啥差点了哇？我的女人，但为啥你大名个就你个就天天你名色给认识起来是的了？天天的，明天托马个大爷，要么呢托马个女友买不起自己，可能名色给，别讲那啥些个明天，别讲那俺说哦，没懂得天天就大哑巴人呐。
2: 아니,チレジな天天に毎晩は天天に毎晩せりる目とて天をまさに말れ。さに말れて、みんなこれだ、さひばたやばさるわ。あ、てんでる、にかじ天天に毎せり、せぎび人生とて、みんて、とまがだやん。やな、とまがんじゅうと毎べじ。だ、べちゃげな、らだがじゃぼすんげだべじ。すんげえひびぎ、みんて、らだがじゃぼ、かつにそちゃ、すんげえせやてにこ、にみちゃぎゅ。 新疆一般的人家说别给光大了，新疆也是要面对，热带个脚步新疆了，托马打不进去。新疆一般的面对了，对呢，热带个脚步，个新疆一般的托马嘛，把个过牛的。热带人家热带脚步，新疆个玉米地，俺说马西天过一个软木，哦，多轻薄，么细又轻薄啊，对呢么八轻薄，么多不着轻薄，但这几了啊，俺的新疆是要面对怕打吧，你呢？啊，俺的这里是呢，各地。
1: 提示了新疆那边面对了村办的民热的，因为民可能农民嘛，当民热是。但真正考虑是吧？因为，过田里买不着的，田里买是的了，到那没得新疆那边的就托马个大爷买不着。我那新疆那边面对就托米大爷的考虑是热大脚步，新疆是要得了哇？嘛都没买的，托米大爷的热大脚步新疆不？真正得了田里没得新疆你买不着。 没得新疆人买不来的，人家过了新疆去过，啊，没把大把子，啊，大把子，你可是了，他过经济解决吧，要不然过啥经济去吧？新疆是的，热大个脚步，新疆是的，到达你把人家的找到，热大说嘛，跟我脚步打不起吧？第一点没得呀，到达你把汉江个全部要把新疆的热也比经济得了的呢，啊，你过了新疆个面的一二呢，你过了新疆去过，啊，大把子，第一点过，啊，第一个是了，他新疆去把的没得就当面的吃吧的。
2: 人家别那白马希巴打不进，俺说伯母跟侬了白马希巴打，别人个伯母跟侬了白马是要米打不的，忙不着啊。对的，白马希巴个米的，天我嘛了托马个大爷的扛了一些的，没多几着啊，啊没多白马是要的，没多白马是要的，白马希巴米的个托米大些。人家西吉了白马希巴个米的，不买的了几了大哑巴人呐？俺你吃的是的，不买的了算买人呐？白马希巴的，个当面吃的，现在个扛了一些白人呐？ 보모도 빼만 말이에요. 빼만 말인 게 비전스 치료했어요. 보모 때, 아, 드니 빼만 히비 미티가 토미가 다이 많이 받자. 그 매도 말아와, 그 말아와. 드니 이봐 인자, 아, 다 대답을 치료했어요. 아니 그 아, 다미 인사 기울이, 다미 인사 기울이. 드니들 아, 다미 인사들로 그 조농 그 조지 치료했나? 아, 미티, 아, 치더라 토마. 아드니 이자바든지 고마인바 아 공유미지 이니 시지로 콜서 이자데바 어 되는지 디들다 너 야보지 고송바이나 아 아니 니미다 다미세 안 되니지 드니 에 치바데 야보지 아니 가서 시터 그래 와야 데르 다 터치르세 디랑 간소 아 드니 니미다 다미시비가 아 미랑 오고군 이야시는 니요 바다 디코르니 도디지 히바든지
0: Tata Chijia Simpati na Bejong Nungchen Nyingchen Likong Kamki Sumta Lhoti Lechen Shri Xiao La Muntiu Ngancui Lechen Sinja Gatsi Hyo
2: Tine Ming La Yang Yaa Shato Nima Ji Chari Se Diriko Ming Tila Ming Dotsul Yana Ming Tatsul Ji Guani Yana Yang Rigni Yo Pa Reis Gang Ni Reis Na Dejel Ji Ming Se Ha Jidang Jidup Ji Ming Se Ni Garangar kita jidup sehir, garang jidup cara dah terakhir jidup jidup seni. Tahu ni yer, tak kahat aja yang ralang garang jidup sehat ni tu tak. Tiada mila tak suci cahni ena dejer jimi ena jidup jimi ni yer. Tak tiga nolah tambo dejer jimi des. Tak dejer sehir ena depan jawas. Kandai sehir ena kete la mite jenis kaya mepa. Oh mite tangkej depan tangi guni tapi mite. ती रिस चबला देजे जि मीस गिर त दोदो के या पाइना ओ चाला तेदा ते निबो तेदा ते छि तेदा तेला मी तंदे जि ताबा तेला ओ मी तागी बिग जिनसे याना मी ताबा ला कुर रेखे को मीस जि कुर जे जि मेबा मी तांके रानी को कुर छ तांक तेले जि पतारा इन को ता या बाचा मातो तेला तंदे तेतर तागी बिग जाहे द जिनसे काया तिनी हे तो मेबिक तंदे के मी ते सोला अनि देजे जि मीस गिर दजर के बोच देपा Jawarachini, Dajar Kimbuji Ndeba, the Sursini, and Kur, Paya Pig means the Yambayamazna, then the Jaji means a good. Tape Yabayena, Nanso Murta, Murchi Jupiter, Sahi Jupiter, Chuhi Jupiter, then you make Jupiter, Lung, then you Po, Mo, R, Nam, then a Ting, Ja, oh, Lasso by Jupiter, me or what, Chi Jupiter me. Tate my imbag pitchagana. Chiki tesolang ngarzo jadju jastu pikitini chiji jibini pena ring tung zi zo tene zangdang nge jo dal la so ba ani chiji jibini mam chiji jibini tene yang ngarzo ro da ani duk tene nyal tene nr tene he tene sa tung la so ba jibik jairwa teso de chiresini shawag mi Shawa dhubi mir wa, shayu mir. Tene yinya ta nga supe jine jini sun yi jia tong chumbung la soba changa gmi. Tene chika, yarka, tuyanka, gengkal, xokpa, gomu la soba tene tisu dhubi gmi. Ta la soba tende mi mambo yo pa. Ta mi teso lan sunba yin jina, o, pe na nga su me, ma ki tenko yi ki senji teso lan me siya toma tabar wa. Sa ki tibi ngibo te la sa, len hi yi ki ngibo teso la chu, sa ki sibi ngibo teso la me, yang hi yi ki ngibo la lungs. वो तंडे के ता मीन तंडे तापा तेला आ अनि जंसे पैसे साकी थी पतेला को सांसे तागे बिग जंसे दरी से नंजे की जाया हमारे माँ की तेंको बिग संजय लगा तो मुझे तागे बिग जंसे ने तंदे दरी से नंजे की जाया हमारे तीन जो मीन तेतर तापा लाको जंसे ता नीचे जाके कहाँ या आ शेज मैं बायें जा आ कौन दिखे बिग मीन तेसो ते अनि मीन नो ता देजे जी मीन चल गया कब ती तीसरे अनि दाजा के बोरांग नंदे पतर तापा मातुल मिसे कि जेसे कांही जि मेबर कि तरी नि ओ साचे मेनु मोला सो बा तेंजे कि मिते पा माता पे नेला मि तासा जे दागि कि छिते सो दा मिते नि परु ना मिसे कि रे कांही यो मारे पेना माहि तें को कि सेंजे देला अनि मोस या माता पि कासला मोहि पि कि शतांग ना सो जाते दा आ माहि तें को सेंजे नि जि परु ला मिसे कि रे कांही यो मारे वे जाता सिजिल आ नतो मना जि तां रोआ मे रिस्चिबिक नतो रोआ मे स्यातेगी अनि मी तेसोर चेरे से दिलता निबो तेदा ते करो नीन जंबाता अनि पदाटे पर अनि कुर्ता देवी छेतले अनि निबो तेदा ता ची तेदा तेला अनि रान सोसो गन देपरता ता मी नबा नासोची अनि कुर ताया पर जर्या पर अनि मी तेसो पातानी अनि पेशे टोंगे टोंगे टोंगे छवा गमनो पेशे टोंगे टोंगे रेंगे रेंगे दे अनि को मी तेदा तासा जी दागी तेनी परुला मींदा तेंजन रेवा दे जन्नी त 等俺说你没就弄我了，恐怕你把他光把钱呢，俺那个明年这样的抢着。人家得了精神感觉，他没办法，俺们对家的名字。等等，等俺说别给跟王的当白人呢，别给跟弄了七七七七就明拍起来什么，他对家的名字。他光的一般呢，也杀去梅龙日南加木破木拉什把七七七应该就等于啊，明拍起来，他就得过对家的名家的。得了精神，他没办法。他等于的了。我呢，他真正跟你把他的家具给明天做了，你就是把人呢，他光的给明，然后我过年呢，玉米的大米捏了，我呢，玉米得了呀，滚对接去，滚大白给真正玉米有，他做了起来呢，玉米对接了是有，滚玉米也把刚洗了，真正干给洗的没把滚，你把他的新的大白给明，他得了别家把人呢，你热的，我缺的，那你傻的，没的，给你八六二下。吃了所谓的命肉啊，他明天做的吃的这里边呢，日大不能说明呢，日一边的明天，你俺说要杀啊，搿等于杀的多了是吧？这边个日有肉啊，日得了土当包了吃的，过明干给就没别个，土米给你干了，你大家看不得了，就是刚要写的要嘛的，人家得认真地写的了，大致地写的了，得了日写的，你怕打也怕啥？啊，你三梅老师吧，这是从嘛等着人？第一，这个日缺三梅，等于八路热下缺老师吧，这是的，你嚷嚷说说给大姨的说了，他妈的大把事，嘛这这是从嘛的可能，他们嘛也把过年把银子跌到地基的农民家的，但人家过农民也把嘛这跌到大把了，精神也就要个没事的了，你日了日大个比个精神，缺了缺大个比个精神，这个得了大家看不得跟对吧？那些人大家吧，精神得了听，农民也把刚起来，你对这个没家的。我得了农民对接了这个，等等，大米那样对接大米有把事，大米那样样对接就大米个大米有把事。哦，等等，别讲个那，是当个日等着急了，让个个托你哦，白马是那，日白马是那的，伢那就是那奔八个日是那的。日就有的白马当扎瓦样马的，日就有的奔八当扎瓦样马的，当天对接你让个内巴那一些呢，天干的日得了，白马的奔八老是把等着打样马。等你打把鸡巴，既然穿把衣呢，第一个是了白马的奔马，拉手把提出的，日头就起来了，农民嘛的大米是。奔马打白的，我说吃路上就多得下有，吃就天天你把的点米，你不得就供农民吃掉了哇？人家打打跌打不个米的，日起了大用，该是大米是。再来人家奔马去打给，精神得了是呢，过些就嘛的，等对接个米。啊，等你白马人家呢，过白马去把的拖当包了，没多白马就米打把了哇，供农民是。人家跌打打了起来，那热起了大用比较少了，热的热，精神刚一些，没比过你大用比较少了。那你大明个侬，大明对家吃什么嘞？是，我听你说了，女明那样对家有吧嘞？大明那样，你对家有吧？等你打，明人多少就过你，对家就明些啊。等你精神刚一些的，没比过你大比跟对家个名气有吧？人呐，啊你样样，他跌了对吧？人那样，你跌打打罢了，精神些的有吧？人呐，热些的有吧？啊，等你你这丫头有比个名气就。他跌错了，其实人呢，几只就明意思，几只就明意思。他几只就明意思的，适当看了，俺说黑白人呢，若没有的就俺说没得干的干人呢，可能个给钱个呢，没得干个给钱人呢，这个早个明的，早一明的，透明个就明的，他记得啊，你对这个打牌，就是黑的没比过的对这个打牌。等俺说别给个弄了，等等等等，人家也没得就给个弄了，等等的，透明个就等于明的说的对这个打牌。他为讲对这个就明跌错的，人家都别些懂呢。明天做就明天那个瓜的做强的，明天对家就明就瓜的忙一些，忙一些比等你。啊，你天大不天做当，明天做当，样呢？你知道吧？样呢？你知道吧？老师把精神刚弄个托你，啊你样也那大爷别个听这个没有？明天做了就是哪呢？一直就明是个，对家就明个瓜的忙一些比等你。啊，你天做就。对家就明天说就打一句，去干的干人呢？对做当，你知道哇？有那知道哇？精神性知道哇？有那个点点名知道哇？有那个干的讲知道哇？但知道了什么精神啊？干容个托你，哎，你眼睛了，过打一比个明天的了，记住就明这个。他得了记住就明这个，记住这个比精神起来些的了，记这个比精神的，过对家就明这比记是大比明白啥得了？记这个，今天这。yana drips ya ta gibi jinse chere chena tine deje ji mingi jis ta pi mi ba yata ji ndawa dan jawa la so ba jinse kanru gu go ni dripping mi ma yata tala drips to ji drips tine sa ja pen da kanga jansa gen ya tan sun yorwa ge yo tampo deje ja 得了对你虚你对也了中度几十不扎